0: ଯଦି କେହି ତୁମର ନିନ୍ଦା କଲା ତେବେ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପଚାର ସେଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। यह फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस

0: उसने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचार करुचु भक्तगीत विशेष कार्यक्रम वंदना आलेख्य एवं उपस्थापन अनित्य महांती।
2: महाप्रभु तमे तो लीलामय, तम लीलार पटांतर नाही। केतेबेळे सबरी अईंठा खाई ताकु दिव्यगति देइछ त, केतेबेळे पाषाणी अहल्याकु उद्धार करिछ, पुणि केतेबेळे द्रौपदीकु वस्त्र दे लज्जारु ताकु निवारण करिछ। हेले महाप्रभु सतरे कण तमर मो कथा केबे भी मने पड़ेनि? मो कातर जणाणा कण तम कानरे केबे भी पड़ेनि? हे चका नयन, थरुटिया मते दया कर महाप्रभु, थरुटिया मते दया कर।

0: जहाँ वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनार सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनार सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्रु प्रचार करचिंता नवेदन करकर्षण मंगराज
2: भक्त पाई भगवान असंभव को संभव करिपारंती। भगवान आश्चर्यकरणी कथा शास्त्र पुराण छत्रे छत्रे लिपिबद्ध हो रही। भक्तर अनुरोध रे निर्दिष्ट रूप धरी निर्धारित स्थान रे काल काल को मध्य महाप्रभु उभा हो रही जनसाधारण को जणाई देउछंती से भक्तर अति आपणार गोटापणे निजर भक्त तांकर जीवन धन रंक रतन। श्रीजगन्नाथ महाप्रभु अणसर रे अवस्थान करुथिबारु प्राय 13 दिन धरी भक्त मानंकु दर्शन देइ नथांती। एही समय रे श्रीक्षेत्र को आसुथिबा भक्त मानंक मनरे कि भली विषाद भाव जातु हे ताहा अनुभवी नहले केही कहि परिबे नाही। आज की बहु वर्ष तले रामानुजाचार्यंकर जणे भक्त सन्यासी आलबंदाचार्य श्रीक्षेत्र रे आसी पहुंचिले। सेतबेळकु महाप्रभु सुनाकु ओ पाणी रे स्नान करी ज्वर भोगुथिबा जोगुं अणसर ताटी मध्यरे थांती। तांकु जनसाधारण ए समय रे दर्शन करिबा मना। श्रीक्षेत्र रे रहणी करिबो महाप्रभुंक श्रीमुख दर्शनरु वंचित हेबो एहाठारु बळी विडम्बना आउ कोण बा थाई पारे। भक्त आलम्बनाचार्य दुख सागर रे डुबिगले। महाप्रभुंक दर्शन बिना जीवन को तुच्छ मणिले। महोदधिरे झास देई मनस्तापरु निस्तार पाइबा पई विचार करी बड़देउल ठारु चालिले स्वर्गद्वार अभिमुखे। बाटरे सोलाखिया बरगछ उपरे बसिथिबा गोटिए हनु तांकर पथरोध करी तांकु अन्य रास्तारे नेइगला। से चाली चाली जाई पहुंचिले श्रीक्षेत्र ठारु 22 किलोमीटर पश्चिम को थिबा ब्रह्मगिरी ठारे। हठात तांकर संबित फेरी आसिला। से भाविले श्रीक्षेत्र ठारु समुद्रर दूरता केते कि दीर्घ पथ अतिक्रम करी मु समुद्र कूळरे पहुंची पारि नाही जे एहा सेही नटवर नागरंकर कपट निश्चय। से जहा हेउ आत्माहुति देबा पई मु स्थिर करि सारिछि जेतेबेळे जळरे नहेला नाही अग्निरे झास देबी। एहा विचार करी आलमंदाचार्य काष्ठ संग्रह करी एकाठी कले एवं सेथिरे अग्नि संयोग कले। हठात केउठारु अनाहत वंशीर मूर्छना मनप्राणकु पुलकित करि भासि आसिला। नयन पथरे उद्भासित होई उठिला अपूर्व ज्योतिरेखा। ज्योतिर बलय मध्यरे नीलनवघन कांति चतुर्भुजरे शंख चक्र गदा पद्म कर्णरे मकर कुंडल शिरे सुवर्ण मुकुट उपरे शिखिचूल गळारे वनमाला हृदय श्रीवत्सलांचन चिन्ह अदररे मंदहास्यरेखा खेळाई पीतवसन वनमाळी उभा होईथिबा देखि आलबंदाचार्य निस्तरिली निस्तरिली कहि तांक पादतळे पडिगले। बारंबार प्रणाम करी करपत्र जोड़ी उभा होई पचारिले महाप्रभु नीलनीरद कांति असुख अछि कि पद्मपलाश नयनर ज्योति निस्तेज जणा पडुछि जे। क्षीण हास्यरेखा खेळाई महाप्रभु कहिले भक्त आम्भे अनवसर रे अवस्थान करुछु तेणु मलिन वर्ण होईछि रोगसज्जारे थिबा व्यक्ति कण सतेज रही पारे। विस्मय विजड़ित कंठरे आलबंदाचार्य प्रश्न कले जहार नाम धरिले व्याधि दूर हो जाए जहार नाम शुणिले महाकाल थरहर से पुणी कालर कबलित व्याधि विजड़ित। महाप्रभु कहिले भक्त ये परा अपूर्व मानुषी लीला नीलाचल क्षेत्र में 60 पौटी भोग खाई नाना पर्वपर्वाणी ओषाव्रत नाना रंग ढंग से बेश हो लीला करने को पड़ी तो तेणु व्याधि भोग करने को ही हेब से आम अणसर बास। आलबंदाचार्य प्रार्थना कले महाप्रभु ये दिनजन गुहारी घेना करिबे महाप्रभु एठी एई रूपरे आपण जुग जुग पई अवस्थान करिबे। भक्त माने अणसर काल रे आपणकर भुवन मोहन विग्रह दर्शन करी श्रीजगन्नाथ महाप्रभुंकु श्रीक्षेत्र रे दर्शन करिवार फल लाभ करिबे। महाप्रभु कहिले तथास्तु तुम प्रार्थना रे संतुष्ट होई मु एठी अवस्थान करिबि। मोर नाम हेब आलबंदानाथ से ही आलबंदानाथ कालक्रमे अपभ्रंश होई होई अलारनाथ। अणसर काल रे भक्त माने अलारनाथ को दर्शन करी आपणा को धन्य मने करी थांती।

यज्ञ बराह हिरण्याक्ष को संहार करे देवता मानकर संकट दूर करने को कहते हिरण्याक्ष कोप कर प्रभु को गदा प्रहार कला माया बल से सही ने से युद्ध भयंकर रूप धारण कला शेष प्रबल वायु प्रवाह वृक्ष जेपरी भूईरे उपुड़ी पड़े सेपरी घोर रड़ी छाड़ी हिरण्याक्ष प्राण छाड़े।

0: दायी भविष्यति इति वार्ताः।
1: आपण माने कार्यक्रम सुनुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु सुनंतु आज प्रचारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना। आमर स्वास्थ्य सकाळ 7:10 रे एथिरे सुनिबे आलोचना बढ़ंता शिशुंक खाद्य आलोचक डाक्टर शैलजा नंदन परिडा। प्रभात परिक्रमा सकाळ 7:25 सकाळ 7:35 कथिका एथिरे रहिछि आलोचना वन महोत्सव आलोचना करिबे डाक्टर देवव्रत स्वाई। रागमंजरी सकाळ 7:40 कंठशिल्पी सौम्या श्रीरथ। संगीत शांतनु महापात्र। सकाळ 8:30 श्रीक्षेत्र माधुरी एथिरे शुणिबे आलोचना दईता सेवक आलोचक दुर्गादास महापात्र प्रयोजना प्रदीप्त श्रीचंदन। गीतगीतिका सकाळ 9:00 दिन 10:00 प्रचार करिबो नाटक मेघ मेदुर। मूल उपन्यास डॉक्टर प्रतिभा राय। रेडियो रूपांतर ओ प्रयोजना हिमांशु भूषण सावत। आम गीत प्रचार करू दिन 11:10 एथिरे शुणिबे केतुटी आधुनिक गीत ए महेश्वर राव एवं संगीता पंडा। दिन 11:30 लोकगीत प्रचार करू ओडिसी कीर्तन परिवेषण करिबे लक्ष्मेन्द्र स्वयं एवं साथी श्रोता एसएमएस द्वारा अनुरोधे हिंदी एवं ओडिया चलचित्र गीतर कार्यक्रम मंजुला मध्याह्न दिन 12:00। दिन 1:10 लोकसंगीत प्रचार करू एकतरा भजन परिवेषण करिबे प्रफुल्ल कुमार पाढ़ी। नारीमहल दिन 1:20 रही सुभाष ज्योति साक्षात्कार। ओडिया चलचित्र गीतर कार्यक्रम अपराह्न 2:45 हिंदी कथचित्र गीतर कार्यक्रम असरंती अपराह्न प्रचार करू अपराह्न 3:00। श्रोता एसएमएस माध्यम ओडिया एवं ओडिया आलबम एवं ओडिया लघु संगीतर कार्यक्रम चिरहरित अपराह्न 4:00। देशभक्ति गीत अपराह्न 4:55 ओडिया चलचित्र गीत प्रचार करिबो अपराह्न 5:00। जीवबाणी अपराह्न 5:30 संध्या 6:10 गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित्र मानसर 65 भाग प्रचार करिबो उज्ज्वला मधेश संध्या 6:30। संध्या 6:55 आज प्रसंग ओडिया कथचित्र गीत प्रचार करू राति 7:02। राति 7:25 जिला हालचाल शुणिबे जाजपुर जिला संपर्क कृषि संसार राति 7:30। राति 8:02 हिंदी चलचित्र गीत प्रचार करू ओडिया भाषा गोष्ठी संगीत शिक्षा प्रचार करू राति 8:30। स्पॉटलाइट राति 9:30 रिले कर प्रचार करू आकाशवाणी दिल्ली। विज्ञान पत्रिकार कार्यक्रम विज्ञान प्रभा राति 9:30। वनमल्लिकार नवम भाग प्रचार करू राति 10:02। श्रोतांक अनुरोध हिंदी कथचित्र गीत प्रचार करू राति 10:30। शुणिले आज प्रचारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना। आपण माने कार्यक्रम सुनुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारिबे किछि समय मध्यरे।

0: दारू देवता कोटी ओडियांक आराध्य प्रभु जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र देवी सुभद्रा और सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति चली अनवसर अनसर बेल एवं श्रीजीवं भक्त दर्शन मना स्नान पूर्णिम 108 गरा शीतल जल से स्नान कर श्रीजू एवं ज्वर पीड़ित चली अनवसर नीति दैतापति सेवक मैंने यथारीति सेवा करथा देहे तथा देवता मानवीय लीला कर दारू देवता अवसर में संक्षिप्त भाव नवेदन करती चपला त्रिपाठी
1: कोटि ओडियांकर हृदय ठाकुर महाप्रभु श्री जगन्नाथ हेउछंती मानवीय लीलार ठाकुर बार मासरे तेर यात्रा करी तांकर लीलारे से स्वयं मग्न होइथंती ग्रीष्म तापरे जर्जरित होई ब्रह्मांडर नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन रत्न सिंहासन रु भाई और भौणी को संगरे धरी स्नान बेदी को ओल्लाई आसंती सुभाषित जल स्नान करी हाथी बेतरे भक्त मानंकु दर्शन दियंती अत्यधिक स्नान कले जेपरी साधारण मनिष असुस्थ होई शारीरिक पीड़ा भोगी थाए एवं पथी खाई थाए कालिया ठाकुर मध्य ठीक सही परी अत्यधिक स्नान जगू महाप्रभु होई पड़ंती असुस्थ बा ज्वरे पीड़ित स्नान बेदी रु रत्न सिंहासन न जाई से जानती अनवसर गृह को बा पिंडी को महाप्रभु असुस्थ थिबा समय रे रंधा भोग लागी हुए नहीं एही समय रे अनवसर पिंडी को धला फूल छड़ा अन्य फूल मध्य निया जाए नहीं केवल राशि तेलर दीप छड़ा अन्य आलोक मध्य व्यवहार करा जाए नहीं एही समय रे घंट घंटा भजन कीर्तन इत्यादि बारण केवल दैतापति और पति महापात्र सेवकों द्वारा सेवा संपन्न हुए महाप्रभु सेवा समय रे सेमाने परस्पर मध्य वार्तालाप मध्य करिन थांती आषाढ़ कृष्ण पंचमी सप्तमी पर्यंत महाप्रभु को फुलुजी तेल लागी करा जाए अष्टमी दिन पटाबंधन उत्सव होइथाए नवमी दिन श्रीजीव मानंकु चंदन कर्पूर राशि तेल और झुणा इत्यादि लेपन करा जाए दशमी दिन तीनोटी मुगुनी पत्थर चका अनवसर पिंडी रे रखा जाए विग्रह मानंकु एही चका उपरे विजे करा जाए एहाकु चका विजे नीति बोली कुहा जाए एही थारे राजवैद्यंक द्वारा प्रस्तुत दशमूल मोदक महाप्रभु को दिया जाए थाए एकादशी दिन ठाकुर माने सुस्थ होइथिबारु एकादशी थारु श्रीजीव मानंकु चंदन कर्पूर इत्यादि लेपन करा जाए एवं पूजा समय रे घंट बाजी थाए एही दिन खोली प्रसाद मध्य लागी होइथाए तेणु एहाकु खोली लागी एकादशी मध्य कहंती द्वादशी तिथि रे ओसो लागी ओ राजप्रसाद विजय अनुष्ठित होइथाए एही दिन दैतापति और पति महापात्र सेवक माने श्रीनहर को जाई श्रीजीव मानंकर सुस्थ हेबार खबर दियंती त्रयोदशी तिथि रे पाटर सेवक जोगाई थिबा 25 हाथ लंबर पाट डोरी स्त्री विग्रह को लागी करा जाए चतुर्दशी रे कनक लागी एवं चका अश्रोप लागी अनुष्ठित होइथाए शेषरे अमावास्या दिन भक्त माने नवजौवन दर्शन करिथांती।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश

0: पाकिस्तान से बात की, पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश

0: आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए

अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं।

0: विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against

0: अरु अरुणिमा
1: अरुणिमा
0: हाँ मो झी अरुणिमा
1: अरुणिमा मु तबे कोठे
0: आग्रा रे मो घरे
1: आपण
0: मु अंबुजो अंबुजो सानी
1: अंबुजो सानी
0: हाँ आपण ट्रेन रे एकाका दिल्ली जाउथिले मु आपणकर अभिभावक साइज थिली आपण बर्थपुर को
1: हाँ मने पड़ला बर्थपुर को चढ़ला बेले मो मुंडटा बुली दला मु पड़ी गली तापरे मु किछि जाननि
0: आपण गाले रे मुंडरे भीषण आघात पाइले दिल्ली नबा आउ संभव हेलानि एणु बाध्य एठी मो घर रखी चिकित्सा करछि आपण परे सुस्थ ही आसलेनि
1: मु जीबी
0: कोठि की
1: घर को
0: घर कोठि कहि परिबे
1: निज घर कोठि कहि परिबेनि
0: अनेक दिन त पारि नथिले
1: माने
0: माने गत जुलाई मास रे आपण एठी आसथिले आउ एटा होछि डिसेंबर
1: एति गुडा दिन
0: कोन करा जाय आपणकर आघात भी खूब गुरुतर थिला
1: आपण अजथा मो पाई खर्चन थले अंबुजी बाबू
0: ना ना ना हेटा तो मोर कर्तव्य से दिन ट्रेन रे मु आपणकर अभिभावक साजि नथिले से अभद्र लोक गुडा को आपणकर निश्चय क्षति कर थांते
1: आपणकर ऋण मो जीवन रे सुझि परिबेनी मो पाई त एत्ते खर्च कलेनी दया करी घर पर्यंत गोटे टिकट कर दियंतु मु पहुंचिबा मात्र आपणकर सब टंका पठे देबी
0: टंका पठियो केते व्यस्त होचंत काई कि मु निजे आपणकर संगे नै आपणकर बापांकर जिमा कर देसबी आउ मो प्राप्यत को भी नहीं आसी
1: ना ना ना आपण काई के मिछरे कष्ट करबे एथरो एकाका मु चल जाई परबे
0: आपण को भली अविवाहित झियो को बिना अभिभावक रे एते दूर पाठ पढियो को एका छाडी देवाटा आजकल जे आदो निरापद न होय एकथा अंत त आपण को बापा मा जानिबा दरकार
1: देखंतु आपण मोर अभिभावक भाबरे एते दिन परे मते नै घरे छाडी आसबाटा अन्य मानु का आखिर होय त असज्य हे पारे मोर उपकार करियो को जाई कथाटा आपण को प्रतिकूल रे जाऊ एकथा मु पसंद करू नै
0: आपण सेमति के भाबचंती जदिबा दुर्नाम होय सेति पे मोर भय नै
1: बुझु नंदि अंबुजी बाबू आपणकर भय नथले भी समाज को मोर तो भय अछि
0: ओ तबे
1: काले टंकाटा आपण फेरि पाइबेनि ए आशंका हबाटा स्वाभाविक तबे ए मुदिटी छडा बर्तन मो पाखर तो किछि नै हो यार मूल्य बा केते
0: देखन त मिसिना मु व्यवसाय लोक टंकार मूल्य मु बुझे तबे मणिष मणिष भीतर बेले बेले अनायास रे जो संपर्क गढ़ी उठे तार मूल्यांकन होय तो करि होयनि आपण सुस्थ होई छंती सेई थरे मो ऋण परिशोध होई जाई छी या परे आपणकर बापा टंका पठे देले मु अवश्य ग्रहण करबि आ न पठेले भी आपणकु केबे ऋणी बोली कहिबिनि
1: हने धन्यवाद एथरो को मो जीवार व्यवस्थाटा
0: चलंतु मु निज स्टेशन नै छाड़ दिया
1: छी ना ना ना आपण काई के जिवे ड्राइवर को कहले
0: ऑलराइट आसंतु

0: Didi. Ponu didi.
1: ये कौन आज बड़े विचित्र कथा मु तमुठी देखुची चाहू छ 7 वर्ष बीती गला ए 7टी वर्ष लोटनी पारा परी तमे खाली खटी चली थिलो टाइम मुताबक रोगी रो औषध पथी सेवा सुसा सांगुकु अरुणिमार भलमंद पाठ पढा कथा सब बुझुथिलो दिन को पाई तो तमा आखिर लोह झरी बार मु देखिनी आज इमिति कोन हेला जे तमे लोह ढालु छ
2: ना रेखा तमे फूल भाबु छ ए लोह दुखर नै आनंदर जहाँ जहाँ अरुणिमा को 9 वर्ष पूरी गला खाली परी लगुच तार लुह सिंघाणी बालू बालू मुह आखि आगे स्पष्ट हो उठुची से पुणी या भितर घर छाड़ी दिल्ली हॉस्टल रही पड़ुच कथाटा भाविला बेल को विश्वास करी हो नहीं
3: आंटी आंटी
1: नाक घुसरी बात के बची बोलो मा ता कथा कौ को आसे हाजिर हो गला
3: अच्छा आंटी ये की कथा कहिलो अरे तमे कांदु छ कौन है तमरा इतने परिश्रम खूब बाधु ना हाँ आंटी आम घर खटी खटी तमे दिन बार भी भूली जाऊ आम को रूनी कर दौ
2: अरुणा ये सब कौन कह चो इतनी छोट पिला तुम्हारे इतने बड़ कथा तो मोटे साजुनी तो बापा तो रूनी रूनी कही कही 7 वर्ष बीते दिले से ढेर है तते भी एक कथा सिखे दिले
3: डैडी कहीं सिखे बे आंटी मु कौन किसी बुझी परनी बाबू चा
2: तो मुहरे आंटी आको तो मनरे डाकनी है अरुणा सेथि पे तो मुहरे ऋण कथा उठिची एणी के बरम मते आया बोली डाक बापन कहि मो पे किछ मासिक भतर बंदोबस्त करि दे सब अलग उठि जबा
3: आंटी मते क्षमा कर आंटी मो भूल हे जाई छी आउ के बे सेंती कहि भी नी
2: चुप कर क्षमा भूल मौसी झियारी को भीतर सब चलेनी बुझिलु तो बापन को नकल करिवारे ओस्ताद हे गेलन देखुची
1: छी अरुणा आंटी मनरे दुख देनी तोरी मुंह को चाहे बिचारी निज संसार भूली
2: रेखा और पिला लोक कथा धरले चलिबो बुझी पार्नि रेखा ए ऋणी हवा कथाटा या बापा मन को कहीं घरुची से कौन आज पर्यंत बुझी पार ना समस्त को पचरे पक निज को ये घर जाने बोली धरी नहीं मो मन दुख भी कल्पना कर पार ना
3: तमर दुख कौन आंटी समस्ते तो तुमको भल कहते मा तो तमर खूब प्रशंसा करे मो सांग माने सुनी आश्चर्य होचंती अनुराग भाई तम कथा सुनी तमको देखिया को गोड़ टिकी बसची
2: अनुराग
3: से कौन कहे जाना आंटी
2: अनुराग अनुराग से किए कौन है आंटी
3: तो नाटा सुनी तमे चमकी उठिला।

0: कौन है
1: मो स्वामी का टेकड़ा मो अजी दे जे हम जब हम खोजे पाने आओ खोजे पाने
2: अंबुज कोड़े गलो हम पर ताजमहल देखियो बुजबा
0: की चंद्रा
2: तमे तमे इठी
0: चंद्रा चंद्रा से किए आदित्य ये पर अश्रु अश्रु मुखी
2: ना ये चंद्रा मु स्त्री मु ठीक चिन्ह पारिची को चंद्रा तमे इठी के भी तमे तेबे नईश्वर उद्धार पाई जाइछ
0: आदित्य आदित्य तू होश अछु तो कहा को कौन बोल कह जाउछु
1: से किछि भूल को ना दियो अंबुज बाबू प्रकृतर मु अश्रु मुखी नहीं मो ना चंद्रमुखी आदित्य मोर स्वामी यह परर देवता से दिन स्वामी को ऊपर पिलाळिया अभिमान करी धूली घर भांगी देवी बोली मन करथि
0: पिलाळिया अभिमान
1: हां से दिन जने स्त्री लोक ता स्वामी रो हाथ मुठा भीतर खसी जाई हठात नई भीतर को डेई पड़ला स्वामी जने को स्त्री सुखर अधीर होई उठिले से दृश्य देखी मो मुंड को गोटे अद्भुत ख्याल ढुकला अनुराग जन्म पर आदित्य मो प्रति उदासीन भाव लक्ष्य कर मुतिष्ठ हो पड़ी मोर से निर्विकार स्वामी को आहरी विव्रत विचलित करने मो प्रति प्रेम गभीरता परीक्षा करने मो खे चिठी लिखि समस्त अलक्ष्य घर छाड़ी चली आसली
0: कौन लिखी थला से चले
1: लिखी थले मोर मृत्यु पाई कई दायी नुहति मानसिक अवसाद जो मृत्यु बरण कर घर चली आसी भाविली दिल्ली रे मो बांधवी घर को जी से पहुंचा पर आदित्य को चिठी लिखे मत आई जातु भावी मो चिठी पाई से व्यस्त भी चलित धाई आसबे मत फेरी नवापे मोर सत घर संसार को मु निज हाथ में भांगी दली निजर सर्वश्रेष्ठ अधिकार निजे वंचित हो गई
2: ओह चंद्रा ये तुम कौन कल कह कह कहीं मत तुम एमती शास्ति दल तुम कि दोष कर दिली
1: तुमको निजे निज को कठोर शास्ति देछि मो बदल उषा को पाई तुम जीवन तो परिपूर्ण हो गला आदित्य मु रहीगली निहाती असंपूर्ण असहाय
2: ना ना तू फेरी चल चंद्र मो स्त्री धर्म को साक्षी रखा मोर विवाह होता
1: ना ना मु चंद्र नुहे मु अश्रमुखी अरुदेवी भौणी मो स्वामी ठिकाना मत जना
2: नहीं कहन चंद्र तू मो स्त्री तुम बिना मु बंचवि केमी
1: ये काकुति मीनतीर प्रहसन आ कहीं आदित्य से दिन घर छाड़ा पर कथा चिंता करी अथच मो अपमृत्यु को गोटे भिन्न रूप दे तुम्हें तो संपूर्ण हो गल सब सत अंबुज बाबू स्वामी मो प्रति प्रेम गभीरता मापिबा को मु गोटे छोट मिछर आश्रय नहीं अथच से छोट मिछ एक विराट मिथ्यार रूप नहीं तारी कंटकित परिधि भितर मत निष्पेषित कर पकई मोर से दिन चपल परस अक्टोपास पर मत आक्रमण कर मत निश्वास कर आज बुझुची मोर कैलकुलेशन भूल था मो जीवन गणित समाधान पार्लानी तुम्हें फेरी जाओ आदित्य मो पाई तुम एक आतरक्ति आज अर्थहीन
2: किंतु सत्यटा को चापी दी तुम्हें कते दिन एमती निर्भेद ही रही थो चंद्रा
1: बहुरूपी भाई मो रंग परिवर्तन कर प्रथमे साजी थी तुम अंकलक्ष्मी परे ही गली और दीदी स्वामी परित्यक्त।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
0: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

तपस्या क्षेत्र राजा उत्तन पद पहुंची गले रे पुओ आ तपस्या करो ना मो संगे घर को फल फेरी आसो तू आज राज सिंहासन समस्त अधिकार करीब रे चिंता कला अल्प टिके भजन कीर्तन करू करू बापा आसी कला सिंहासन धारण करने तेणु ध्रुव पंडित कहवाक गला नंद।

0: ଏଇଠି ସଲାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଜୁଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा की 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए।

0: 81 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Marking the 11 years of the initiative, Mr. Modi said that Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. Home Minister Amit Shah has said that the government has transformed India into a digital nation by expanding digital connectivity, strengthening digital governance, and improving access to public services. Marking 11 years of the Digital India initiative, Mr. Shah said the country has witnessed significant progress in internet connectivity, digital infrastructure, and technology-driven governance. In a social media post, he said that over 103 crore people are now connected to the internet, while more than 2,20,000 villages have been linked through BharatNet. Revised wage rates under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 have become effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat G. Ramji. 21 states and administrative units which previously had wages below 300 rupees have now been brought up to the new benchmark. Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. In Uttar Pradesh, 5 people, including 2 minor girls, were killed after a sleeper bus collided with a car on the Agra-Lucknow expressway in the wee hours today. According to the officials, the sleeper bus was travelling from Haryana to Bihar, while the car was heading from Agra towards Lucknow when the speeding bus hit the car from behind. After the collision, the bus fell off the expressway and overturned.

0: अजणा लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु SBI सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबू आपणक घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
1: अच्छा दास बाबू आपणक घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: सुनंतु एकतारा भजन परिवेषण करछंती प्रफुल्ल कुमार पाढी।

0: ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ଏକତାର ଭଜନ ଶୁଣିଲେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
1: अच्छा दास बाबू आपण घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: ठीक समय रे बुणंतु आउ प्रचुर अमल रो गारंटी पांतु चासो विषय रे चासी ठार भलो किया जानिसि बिहन ठीक समय रे बुणा जाय सारि छ
5: मु फसल विषय रे नुहे एनपीएस संचय विषय रे कहू छी
4: हे आज्ञा ये एनपीएस संचय कोन
5: एनपीएस संचय होउछि भारत सरकार को प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा परिचालित एक पेंशन योजना जेउथिरे मात्र 250 टंका रे खाता खोली टंका जमा करथिले आपनकर वृद्धावस्था रे मासिक पेंशन मिलिबो। आज ही एनपीएस संचय रे जमा करबा आरंभ करंतु आउ निजो भविष्यत सुरक्षित करंतु। अधिक विवरणी पई निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा निजो बैंक सहित जोगाजोग करंतु। एनपीएस संचय सहित भविष्यत पई प्रस्तुत रहंतु।
0: ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀ ମହଲ।

0: साने करेगा अपना चर्चा ये जहां हां हां हां धिन तिनक धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन तिनक निशा
1: आमे जानछु जे प्रत्येकंकर सफलतार पछरे जणंकर काहारी ना काहारी हात थाए आपनकर सफलता पछरे काहार हात रहिछे
0: मु गीत गाइबा तो इन्स्पायर हेछि मो मामांक ठु मो मामा मते गीत गाइबा पई कि आग टीचर पाखकु नेकि जाइथिले किन्तु मो गुरु ही मते सिखैछन्ति केमिति गीत गाइबी केमिति अलगा अलगा स्टेज रे परफॉर्म करबी टेक्निक सब मो गुरु माने ही मते सिखैछन्ति तो सेथि पई मु मो गुरुंकु माने मते बोधे बहुत अनेक जन्म नेले भी मो गुरुंकर ऋण केबे सुझि परबी नाही एई अल्प अल्प देखा अल्प अल्प कथा मन जमा मानिना।

0: and in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 the entire round of 16. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
3: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री

0: शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense

0: sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagements.
3: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत करदरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHYRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना है।

0: इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
1: केवल आकाशवाणी।

कथ चित्र गीत श्रोता बंधु मो सहित पूर्व भाई प्रति गीत व्यवहार कर गोटे शब्द से शब्द को आपने शुणु भरपूर मजा उठा तेज आउ डे आरंभ करवा हिंदी कथचित्र गीतर कार्यक्रम असरती अपराह कार्यक्रम आरंभ गीतटी द्वित कंट्री आनंद पड़वा दीप नारायण कथचित्र आशीष।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ये सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। यह सुनकर सभी ब्राह्मण

0: माध्यमान् सम्बोधयन् जनरल सेठः अधोरेखितवान् यत् भारतीय सेनायाः उद्देश्यं प्रविधीयुतस्य भविष्यस्य कृते सज्जीभूतस्य सेनायाः निर्माणमस्ति। सहैव यश्च प्रत्येकस्मिन् विषये सशक्तं बहुविध क्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं च समर्थं भवेत्।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारिका दूतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.1 किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति। यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीज की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतु विभाग अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृट कालः अग्रे गमिष्यति। आगामि दिनद्वयोः उत्तर प्रदेशे बिहारे उत्तराखण्डे ओडिशा प्रदेशे विदर्भ क्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देश अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 इत्यंकैः पराजित्य 16 चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
3: आकाशवाणी कटक शुणुतु आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रस्तुत उज्ज्वल आम देश प्रयोजना विनय कुमार सामंतराय उपस्थापन अछन्ति बाउरीबंधु स्वाई।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ
1: କମ୍ପ୍ରିମିୟମ ଜ୍ୟାଦା ବୋନସ ଅପନୋ କେ ଲିଏ ସବସେ ସହି ଆରପିଏଲଆଇ इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

시원한 또 하위 거 쇼잖아. 런던로 오발타레 ICC 모헬라 T20 비쇼컵 2026 रे इंग्लंड एवं दक्षिण अफ्रीका मध्यरे अनुष्ठित हेबाकु थिबा द्वितीय सेमीफाइनल मैच रो धारा विवरणी हिंदी एवं इंग्रजी भाषा रे रिले करी प्रचार करिवो आसंता काली राती 10:30 मिनिट रो खेल शेष हेबा पर्यंत পুনি আউথরে শ্রোতা বন্ধু মানুষ কহি রকুছু আজ রাতে 10:30 মিনিট শুনবে আপন মানুষ অনুরোধে হিন্দি কথাচিত্র গীত

0: ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार

0: सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद

0: 57 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात

0: 9 बजे इंग्लैंड और डीआर कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला डीआर कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves two major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: I got to know what I want to get. Mude ale maricada, mude ale maricada, mude ale maricada.
1: Oh, yes, so what's
2: up? Oh, that's the fellow.
3: Aku tas lagi bantu lain. Negeri kali kali payah timun kolain.
2: Tas lagi bantu lain. Mudah dah, nol fees mah. Enti patah ya berdin ke got loko kuli. Boleh sate, pantas, soye, misa kuli. Negeri din ke kuli beti korban. Tas kaman korban, je lain.
1: Mujah anu gak kuri cik sambil. Gadma manangkara parba parbani deba debi puja ra. Eka nirdista bisnes satu rahici.
4: Nirdista bahar. Asa mosange. गाँ मुंडर से साड़ गच घेरा जा पथर बंधे गोलाकार जगह को चाहिए
1: हाँ तो ये कौन संबित
4: ये हला हुंडी बहु पूर्वर से पितृपुरुष द्वारा पूजित यही उपासना बेदी एठी दिशारी विभिन्न पूजा पाठ करी थांती बर्षर विभिन्न समय रे
1: सतर संबित अद्भुत ये गादवा संप्रदाय कृषि भित्तिक जीवन से मानकर जपरी चल चंचल धर्म जीवन भी ठीक से परी
4: आउ बड़ी प्रथा भी
1: अच्छा पिला जन्म समय रे
5: छुआ जन्म वाला दिन बुढ़ी गुटी की दुईटा थी बुढ़ी मैंने तांकर पाखे बसी छुआ जन्म करवाकु से जो माइकिना डेलीवरी हम तार पाखे बसला लोक ताकि आम कहू बंडकी डोकरी बंडकी डोकरी छुआ जन्म हेल्ले तार नई काटे नई काटे नईटा को नहीं कर आंथरी बाटे गोटे गात करेंगे फुथे
3: गोटे द्वार बंद पाखे
5: हाँ आज्ञा फुथे सेठी छुआ के नहीं कर पानी दुआईबे ता माँ भी सेठी गाधे गाधला पर आम अच्छी कर्डी कर्डी साग कर
3: देखु कर्डी मानला आपणकर बाउंश गजा
5: बाउंश गजा
3: नहीं जो समय बाउंश गजा नमी कर
5: शुक्लाटा रोच गाधा पदाइला पर कर्डी तरकारी करे आत रांधे बंडकी डोकरी बंडकी डोकरी खाइब से तीर लोक खाइबे कर दिए रसुण पंद्रह दिन खंडे छाल निल पुओ को आत सेकाई कर पेट छेकिबे पुओ को झील को
3: पुओ कहे बंडकी डोकरी सब जा करना
5: बंडकी डोकरी से दिन कर बंडकी डोकरी से दिन करी प्रथम हो प्रथम कार झील कि पुओ हो जार जो बो फिल बंडी डोकरी करने से तो जान नहीं गोटे बुढ़ी लोकटा
3: पिला को गाधुआ फाधुआ तार स्वास्थ्य जत्न सब
5: बुढ़ी
3: करते
5: मान एक कहो एक आगे आंडी दरानी आंडी दरानी दस दिन कि बार दिन पंते बुढ़ी मान कर
3: हांडी धरानी कमी कर
5: आंडी दरानी डिसारी थी डिसारी की डाक्या हम डिसारी गोरे डिसारी गोरे जीवे डिसारी कुड़ा कुड़ा खोइबो कुकुड़ा दबलाटा चित्रा वीरवानिया खांदुलवानिया खोजुंती आ

0: उसरी किंवा छेली ए प्रकार ये करे नड़िया करी बमलिकाल बस बमलिकाल बसाई से पुह को माँ को बसाइ बसाई करी पूजा कर
1: बमलिकाल बोले जो नईटा पोता
0: नईटा फुताई थी
1: पूजा
0: कला पूजा कला तो जाटा अच्छे कुकड़ा कि नड़िया सब जा काटे जीवन मारे जीवन मारला रांधे रांधला बंडकी डोकरी को बाथ देवे बाथ नेबो बाथ नहीं से नई काल बंडकी डोकरी डिछारी नहीं बेटी संगे टिके टिके पत्र करदे आत टिके टिके रखे गोटे चार पांच जगार
1: ना कौन दिखती ना दिखती
0: ना डिसारी एक देव
2: आउ कहीं मरी गले
3: ठीक से ही एका प्रथा जहां अन्य मानकर अछि आर्थिक स्वच्छलता परिवार रथिले दाह ता नहले पोती दबा आउ पोतिबा समय रे पुरुष मृत देहर मुंड को पश्चिम दिग को एवं स्त्री रो मुंड को पूर्व दिग को मुही पोती दिया जाए ए काम मृत व्यक्ति रो भाई किंबा पुत्रा माने करिथांति सेमान को अनुपस्थित रे पुओ करबा पई बाध्य होए
2: अच्छा तमे आउ गोटे कथा जानि छ ना तमे देइथिबा बही रु मु पढ़ीतिली गाधवा माने पुनर्जन्म रे विश्वास करंती एथिपई से माने उडे की उत्सव पालन करंती तो
3: हां से हला गोटार उत्सव माघ मासर कोनसे एक शुभ दिन रे उत्सव हुए एही दिन बहु संख्या रे मैंसी ओ गाय को किणी गोटाए पडिया रे गोजिया खुंटा रे से मानकु बांधि दियंती
2: तापरे
3: तापरे निशाग्रस्त अवस्था रे से माने ताकु टांगिया रे बारंबार आघात करी अति निर्दय भाबरे मारंती एवं मरिजिबा परे से मानक अंतनाळी को पेट मध्यरु टाणी बाहर कर दियंती गाधवा मानकर विश्वास जे एमिति कले मृत व्यक्तिर आत्मा मुक्ति पाइबो बा पुनर्जन्म ग्रहण करिबो
2: बाबा के निष्ठुर प्रथा एमानकर अच्छा संबित सेमानक भीतर ए पर्यंत से अंधविश्वास रही छि
3: जन्म ठारु मृत्यु पर्यंत सब कार्य रे एमाने दिसारी उपरे निर्भर करंती
1: दिसारी बाबू तम ना कि ना
4: सुब्रमण्यलि
1: तमे डिसारी पाइटी करलो बोले कि पाइटी करलोनी सेटा डिसारी पाइटी बोले
4: डिसारी पाइटी बोले असस्यर जड़ दरबार कुकड़ा फिला कज भाई सेलो परा कज भाई हमस कज भाई बरिया कज भाई कुकड़ा कज भाई चली कज भाई मुई जाई करी गोंडाले को भी माफ कर भी दुनिया लोक भी काम करवाटा काम डाक भी से माफ रु दुनिया माफ के डाक भी सेती सब जाको पूजा कर धूप कंट पढ़ाई से गुदकारी पढ़ाई कदली आगवा सब काम कर दे कर सब मोर सेष्टा सेटा
1: हेले तमरो ओसको सामने तमे निजे सिखला डा कि तमर बापा दादा
4: सेटा सपने का देला आगे से बकमणा का दे जाचे
3: गोटा कथा स्वाति ए गादवा मानक मध्य केतेक पुरातन जनजाति गोष्ठी को विशेष लक्षण थिले भी एमानको ए जाय आदिम जनजाति गोष्ठी हिसाब रे घोषणा करा जाय नै
2: मु कहुनी अन्य किछि सामंजस्य अछि अच्छा संबित तमे पुनि ऐप रे ब्लॉक इंस्पेक्शन को जिवो
3: राजकार्य को अवमानना कले तमर ए जंगल बुलीबा विभिन्न जनजाति को संगे मिसिबा कार्यक्रम संपूर्ण बंद होई जिवो जे
2: तबे जिवो चलो
3: चलो

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर

0: में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक
2: आजिर शेष समाचार मुख्यांश सह मु सुभाष चंद्र शतपथी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार राज्य क्याबिनेट्र बैठक अनुष्ठित लोकसेवा भवन सम्मेलन कक्षर अनुष्ठित बैठक में विभिन्न विभाग 12 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राज्य केजी पिजी पर्यंत समस्त छात्र छात्री को मागणा शिक्षा प्रदान पर क्याबिनेट्रे निष्पत्ति ग्रहण कर राज्यर नवम दशम श्रेणी छात्र छात्री मध्याह्न भोजन प्रदान आसंता 5 वर्ष एथिपाई 4,224 कोटी टंका खर्च कर। राजधानी जयदेव विहार नंदनकानन रास्ता को 8 लेन क्याबिनेट्रे निष्पत्ति। महात्मा गांधी नरेगा योजना बदलने आज देशव्यापी भिभीजि रामजी योजना लागू करा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपाल अध्यक्षतार स्वीकृतिप्राप्त राजनैतिक दलगुड़िकर प्रतिनिधि एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित। बैठक में स्वतंत्र भोटर संशोधन कार्यक्रम अग्रगति संपर्क समीक्षा कर। आसंता 5 तारीख में चिठा भोटर तालिका प्रकाश पाइबोली बैठक जमापड़। चलित शिक्षाबर्षर स्नातक पाठ्यक्रम नामलेखा आसंता प्रकाश पाइबा द्वितीय मेधा तालिका को स्थगित रखी। नूआदिल्ली एवं उत्तरप्रदेश विभिन्न सड़क प्रकल्प निर्माण को केन्द्र क्याबिनेट्र अनुमोदन एथिपाई 14,000 कोटी टंका खर्च कर। वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री कार्यकाल 1 वर्ष वृद्धि कले केन्द्र सरकार।

0: आम परंपरा आम कला संस्कृति आकाशवाणी ही रखिचे साइति।
1: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए
3: आकाशवाणी कटक आमर स्वास्थ्य अजित रसंत सुनिबा भेरिकोस पेन आलोचना करिछंती डॉक्टर कैलाश चंद्र महापात्र।
4: आमर पाद एवं गोड़ एक दरकारी अंग प्रतिदिन गोटे जगार अन्य जगह जीवा आसिया पई एहा सुस्थ रहिबा दरकार किंतु एही अंग विभिन्न प्रकार रोग से आक्रांत होइथाय एवं रोगी पई चलिबा कष्टकर होइथाय एहा फळरे नित्यदिनिया कार्य करिबा प्राय असंभव होइ पड़े जदि से घरर मुरबी होइथाय तबे से घर को ठीक भाबरे चलाई पारे नै एही परिप्रेक्षीरे गोड़ परी अंगटी आम पई केते मूल्यवान ता सहजर अनुमान करि पारुथिबे तेणु गोड़ एवं पाद को सुस्थ रखिबा आमर कर्तव्य। पाद एवं गोड़ रे केते प्रकार रोग देखा जाए सेगुडिक हला डायबिटीज जनित पाद रोग फाइलेरिया गोड़ रोग बर्जर्स रोग एवं भारिकस फेन्स रोग एही सब रोग रे गोड़ ठारु पाद पर्यंत घा एवं फुला सहित कष्ट हुए रोग बढ़िगले पाद हरेबार संभावना मध्य रहे एथिरे रोगी को डाक्तरखाना रे अनेक दिन रहिबाकु पड़े बहुत औषध ओ ऑपरेशन लागे एवं प्रबल अर्थ खर्च हुए रोगीर सेवा करिया पई मध्य अनेक लोकंक आवश्यकता पड़े एही सब कारणरु रोगी ओ ता परिवार सर्वसंत होइथांदि एपरि रोगर सामाजिक आर्थिक एवं सर्वोपरि देशर अनेक नष्ट होइथाय तेणु श्रोताबंधु आसंत आज आमे एही परि एक रोग विषय आलोचना करिबा एहाकु भारिकोस फेन बा भारिकोस अल्सर कहंती। एही रोगरे गोडर पाद पर्यंत सिरा माने मोटा एवं जळ जळ होइ देखा जांती गोटे गोटे जगार सिरा माने मेंचा मेंचा होई बाहर को देखा जानती सिरा भीतर रक्तचाप अधिक

0: जय प्रभु अलारनाथ, जय प्रभु अलारनाथ, शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु अलारनाथ, ए अकिंचनर प्रणाम स्वीकार करिबा होंतु हे नारायण। गोसे महाप्रु दंडवत
1: आयुष्मान भव,
0: ठाकुर को दर्शन कली एई जत।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचारित हेउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ज जोगे शुणन्तु। आज प्रचारित हेबाकु थिबा कार्यक्रमर सूचना अभिलेखित प्रचार करिबो दिन 11:10 मिनिटरे। एथिरे शुणिबे सिद्धार्थ मिश्र एवं बन्दिता राय गाइथिबा केतोटि आधुनिक गीत। दासकाठी गीत प्रचार करिबो दिन 11:30 मिनिटरे। परिवेषण करिबे मंगल महापात्र एवं सहदेव स्वाई। मंजुळ मध्यनरे हिन्दी एवं ओडिया कथाचित्रर गीत श्रोतांक एसएमएस माध्यमरे अनुरोधरे दिन 12:00 दिनकटे 10 मिनिटरे प्रचार करिबो केन्द्रा गीत। परिवेषण करिबे बाबा जीनाथ।

0: वृषभङ्गुधरी पार्वती सह
1: अच्छा
0: शिव नीरवतीङ्कर वाम पार्श्वरे उपस्थित
1: पहुँचिले
0: सेतेबेले पार्वती वृषभरु उत्तरी
1: अच्छा
0: आपनार बसन लगाई तार मुख।

हम तुम्हारे हैं सनम ए चलचित्र द्वैत कंठ से गीतटी को गई उदित नारायण एवं अनुराधा पौडवाल गीतटी को शुणापी अनुरोध करसुंगुड़ा सालेपुर कटक्रु वासुदेव त्रिलोचन कालिया भलिया कुनी निनी लिटुनी बापा बो आसंतु मनको पसंद रो ए गीतटी शुणा।

0: পরবর্তী গীত হিন্দি কথাচিত্র কয়ামাত্র। গীতটিকে দ্বৈত কণ্ঠে গাইছেন কুমার সানু এবং অলকা ইয়াগ্নিক। শুণবা অনুরোধ করেছেন গোপপুর নিশ্চিন্ত কোইলি কটক চন্দ্রকান্ত পুষ্টি।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

सूर्यमुखी आसतु यथाचित्र गीत शुणा महम्मद रफी कंठ से गीतटी शुणापी अनुरोध कर बैरागी चरण साहू एवं गोदावरी साहू कबाट बंध जाजपुर।

प्रजकों रो शेषों की तो हिंदी कथा चित्रों केदारनाथ रो द्वैत कंठरे गए चंदी अरिजीत सिंह एवं निकिता गांधी सुनिए वहीं अनुरोध करी चंदी नुआपटना तिगिरिया कटक्रू लक्ष्मीकांता।